91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये तो सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुहां दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओं कर दे अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने। वहाँ सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

91.2 MHz पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

जिन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इंगे बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ। इस वक्त तुहा सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक जी श्रोताओ। ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनदे न कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहा सारी इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये है तो सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह।

0: आ देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।
6: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अब मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
9: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
10: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
11: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
10: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
12: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
13: सही है यार।
12: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
13: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है, वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। और बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
12: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
14: अरे बाप रे।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

991.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने वही एहसास हर बार नया। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई।

सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहां हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या आर्टिजन मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना पहन दे।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: ये ना सर।
6: सर सर सर,
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी।

0: मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
1: तुझे पूरा यकीन है?
0: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
2: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
3: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
4: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
2: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
6: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। तो बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
5: तुम इतने पैसों को क्या करोगे?
7: अरे बाप रे।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और हाँ श्रोताओं, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और बने रहेंगे अब पूरे दो घंटे आपके साथ। इस दो घंटे के सफ़र में करेंगे हम ढेर सारी बातें आपके साथ साझा और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, देरी ना करते हुए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कार्यक्रम में फिर से यहाँ पहुँचे हैं और दिन की बात करें श्रोताओं, तो आज है संडे। संडे की सुबह, आराम का दिन, दोस्तों के संग मस्ती और बारिश की रिमझिम, पूरे हफ्ते की थकान मिटाने का दिन। तो श्रोताओं, संडे है सबका प्रिय दिन, क्योंकि संडे सभी को अच्छा लगता है। इस दिन हर दिन की भाग दौड़ भरी जिंदगी से हम सभी को थोड़ा सा आराम मिलता है और साथ ही साथ उस दिन खूब मस्ती भी हम लोग करते हैं और पूरे हफ्ते की थकान के बाद आराम भी मिल जाता है। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि 6 दिन जब हम काम करते हैं तो 7वां दिन हमारा विश्राम दिन होता है। उस दिन हम आराम करते हैं, जो काम हमारे हर दिन रह जाते हैं उन्हें भी निपटाते हैं। तो संडे तो बहुत ही अच्छा और सुकून भरा दिन होता है, बहुत आराम मिलता है, क्योंकि एक दिमाग को ये होता है कि आज हमें कहीं नहीं जाना है, घर पर ही रहना है। तो श्रोताओं, इसी तरह से आप संडे को करें इंजॉय और हम आप तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

Jesus, love is wrong. All I know is you and me.

श्रोता, इस गीत के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में हम वापस आ चुके हैं और थोड़ा सा हम वेदर की ओर रुख करते हैं। मौसम की बात करें श्रोताओं, तो आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और मौसम आंख में चले भी खेलता रहता है, कभी धूप तो कभी बादल और तो कभी रिमझिम बारिश की फुहारे। तो श्रोताओं, इसी तरह से अभी हमारा ये बरसात का मौसम चलने वाला है। तो खैर, बरसात में हम सभी को अपना ख्याल रखना है और ध्यान रखना है। जब भी कहीं बाहर जाना है तो छाता और बरसाती ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा शरीर एकदम गर्म होता है और बारिश पड़ने से हम बीमार भी हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है और ख्याल रखना है। इन्हीं बातों के साथ आज के वेदर की बात करें तो आज का वेदर है 27 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 79%। तो इसी वेदर के साथ ही श्रोताओं, फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: तो इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओ, आज है 9 अगस्त का दिन, भारत और दुनिया के लिए बहुत खास दिन है। इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी कांड और नागासाकी पर परमाणु हमला जैसी बड़ी घटनाएं हुई थी। इसके अलावा आज विश्व आदिवासी दिवस भी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। श्रोताओ, थोड़ा सा आगे हम रुक करें तो 1925 में भारत के प्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना हुई थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। और इसके साथ साथ 1942 में महात्मा गांधी ने मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा दिया था। तो श्रोतो, हमारी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर श्री अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित। किन्नौर जिले में बेटी जन उपहार योजना परिवार को आर्थिक सहारा देने और उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बन रही मददगार। केंद्र सरकार ने कहा, उपभोक्ताओं के लिए UPI और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। और मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने कल 10 व 11 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब तक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। इस बीच देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भाजपा ने कल शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया।
2: तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान का भाव, इस बात को और मजबूत करने की आज की तारीख में जिस प्रकार की आवश्यकता है, पूरे देश भर में हमने पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर भी ये फैसला लिया है कि 15 अगस्त से पहले हम पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय विधानसभा के स्तर पर तिरंगा यात्रा करेंगे और उसके साथ हर घर तिरंगा, इस बात को भी सुनिश्चित कि हर घर में तिरंगा लगे, इसके लिए भी अभियान जो है वो हमारी पार्टी की ओर से, हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदेश के मुताबिक हम करेंगे।
1: जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर श्री अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्रा जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालटाल बेस कैंप में ठहरे हुए 1202 तीर्थ यात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3336 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालटाल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। किन्नौर जिले में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारों के लिए बेटी जन्म उपहार योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत अधिकतम दो बेटियों के जन्म पर प्रत्येक बेटी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बेटी जन्म उपहार योजना का उद्देश्य बेटी के जन्म पर परिवार को आर्थिक सहारा देना और उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करना है। पेश है ये रिपोर्ट।
3: योजना के तहत मिलने वाली राशि बेटी के नाम FDR के रूप में दी जाती है। यह राशि बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्राप्त की जा सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। उपलब्ध योजना जानकारी के अनुसार इसके लिए लाभार्थी की बोर्ड सदस्यता कम से कम 2 माह की होनी चाहिए। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने काकोरी ट्रेन घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इन साहसी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और समर्पण से ब्रिटिश शासन को ये संदेश दिया कि देश के संसाधन उसकी जनता के हैं। राज्य स्तरीय जनजाति मेला 2026 के तहत 13 अगस्त को लाहौल स्पीति के केलंग में रन फॉर नेशन रन फॉर प्राइड थीम पर मिनी मैराथन आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में पुरुष, महिलाएं, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग और वरिष्ठ नागरिक हिस्सा ले सकेंगे। आयोजन समिति ने युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: लगभग 6 किलोमीटर लंबी यह दौड़ शाकस नाला से शुरू होकर कमांडर नाला और फिर वहां से वापस दौड़ते हुए पुलिस मैदान तक पहुंचेगी। प्रतिभागियों का पंजीकरण सुबह के 6:15 से लेकर 6:45 के बीच किया जाएगा, जबकि मैराथन सुबह 7 बजे शुरू होगी। प्रतियोगिता में पुरुष, महिलाएं, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग और वरिष्ठ नागरिक हिस्सा ले सकेंगे। आयोजन समिति ने युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। ये आयोजन फिटनेस, खेल भावना और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम होगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इधर राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सुबह से आज बादल छाए हुए हैं। मॉनसून से प्रदेश को अब तक 835 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज मॉनसून कमजोर रहेगा, वहीं कल 10 अगस्त और 11 अगस्त को पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 10 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 11 अगस्त को चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 12 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 10 और 11 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 10 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 11 अगस्त को चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 12 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है, हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ सकते हैं और जल स्तर बढ़ सकता है। इसे देखते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
6: खराब मौसम को देखते हुए बाधित हो रही किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर प्रशासन ने राहत देते हुए यात्रा की अवधि को बढ़ा दिया है। अब ये यात्रा 15 अगस्त तक संचालित होगी। पहले ये यात्रा 10 अगस्त को समाप्त होनी थी। यात्रा की अवधि बढ़ाने के बाद प्रशासन ने 11 से 14 अगस्त तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। पंजीकरण पोर्टल 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इच्छुक श्रद्धालु जिला किन्नौर की आधिकारिक वेबसाइट hpkinnaur.nic.in पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने चंबा बस दुर्घटना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, चंबा में अनियंत्रित होकर गिरी बस, 7 की मौत। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, चंबा के चलुंज में सड़क पर पलटी निजी बस, 7 की मौत, 11 घायल। दैनिक जागरण प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, चुनावी प्रक्रिया में कार्यपालिका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। जबकि दैनिक भास्कर लिखता है, प्रशासनिक अधिकारी मर्जी से रोक नहीं सकते पंचायत चुनाव। पंजाब केसरी की एक खबर है, JBT शिक्षकों के युक्तिकरण को मंजूरी, जरूरत वाले स्कूलों में भेजे जाएंगे शिक्षक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल दोनों मार्गों पर श्री अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित। किन्नौर जिले में बेटी जन उपहार योजना परिवार को आर्थिक सहारा देने और उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बन रही मददगार। केंद्र सरकार ने कहा, उपभोक्ताओं के लिए UPI और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। और मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने कल 10 व 11 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ हम कार्यक्रम में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। तो श्रोताओं, समाचारों से पहले हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। उन महत्वपूर्ण घटनाओं में अगर हम 1945 की बात करें तो अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिससे भारी तबाही हुई थी। और साथ ही साथ 1971 में भारत और सोवियत संघ और सहयोगी संधि पर हस्ताक्षर भी हुए थे। इसके साथ साथ 1974 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट कांड के कारण अपने पद से इस्तीफा भी आज ही के दिन दिया था। और श्रोताओं, आज के दिन को हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। दुनिया भर के आदिवासियों के अधिकार और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी हमारे पास हैं। भारत रूस के संबंधों के इतिहास में 1971 में आज ही का दिन एक ऐसा दिन था जिसमें दोनों देशों के रिश्तों के स्वरूप को दशकों तक निर्धारित किया गया था और तत्कालीन विश्व के समीकरण में आमूल परिवर्तन कर दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया गया था। ये वह समय था जब भारत के खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का गठबंधन मजबूत होता जा रहा था और तीन दिशाओं में घिरे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा महसूस होने लगा था। ऐसे में सोवियत विदेश मंत्री अंद्रेई ब्रोमिको भारत आए और 1971 को आज ही के दिन उन्होंने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के साथ सोवियत शांति भारत मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों में एक मील का पत्थर रही। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा कर लेते हैं। 1970 में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और गुमनाम नायक त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का निधन हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष जेल में गुजारे थे और संभवतः सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। 1971 में भारत रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और 1999 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्टेपिन के बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और 1905 में नासा का मानव युक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा था। तो श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को यहाँ पर देते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागासाकी दिवस के बारे में। आज के दिन को हम नागासाकी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम की याद और उससे हुई भारी तबाही के से पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है ये दिन। और अमेरिका में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह 11:02 पर नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया था, और इस प्लूटोनियम बम का कूट नाम फैटमैन था। यह भयंकर विस्फोट में तुरंत लगभग 39,000 से 40,000 लोग मारे गए थे, और साल के अंत तक विकिरण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 70,000 से 80,000 तक पहुंच गई थी। तो श्रोताओ, ये तो थी जानकारियां भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में हम एक बार फिर से वापिस आ चुके हैं और हमारी बात गीत से पहले हो रही थी नागासाकी दिवस के महत्व के बारे में। ये दिन परमाणु हथियार की भयंकर परिणामों की याद भी दिलाता है और साथ ही साथ विश्वभर में शांति बनाए रखने और परमाणु निशस्त्रीकरण का संदेश देने का भी ये दिन है। इस दिन लोग युद्ध में मारे गए निर्दोष लोगों को याद करते हैं और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो उसका संकल्प भी लेते हैं। तो ढेर सारी जानकारियां लिए आज का कार्यक्रम है श्रोताओं। तो आज के कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं हम आगे बढ़ते हैं और बात हमारी हो रही थी नागासाकी दिवस के बारे में। श्रोताओं नागासाकी दिवस के इतिहास की बात करें तो ये 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमले की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। दूसरा ऐसा बम हमला था। इस घटना से 3 दिन पहले हिरोशिमा पर बमबारी हुई थी। श्रोताओं अमेरिका के नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम बम गिराया गया था और बम की विनाशकारी विस्फोट से तत्काल और दीर्घकालीन जनमानस हुआ था। 1945 के अंत तक इस बमबारी के परिणाम स्वरूप लगभग 70,000 से लेकर 80,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य लोग आने वाले वर्षों में चोटों और विकिरण संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहे थे। और इसके संदर्भ में थोड़ी सी और बात करें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी जापान तथा आत्मसमर्पण का एक महत्वपूर्ण कारण थी, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 1945 को की गई थी और औपचारिक रूप से 2 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक थे। तो श्रोताओं अपनी जानकारियों को फिर से थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्म।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो धर्मशाला कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कुछ किताबों की करते हैं। श्रोताओं, किताबें पढ़ना हमें अकेले में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देती है। और आप सोच रहे होंगे कि किताबों की बात आज क्यों की जा रही है। बिल्कुल श्रोताओं, सोचना आपका बनता है क्योंकि आज हम मना रहे हैं नेशनल बुक लवर डे। और कहते हैं किताबें खुद चुप रहती है लेकिन जिसने भी पढ़ ली है वो बोलना सीख गया है। बिल्कुल सही बात है श्रोताओं, किताबों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं, राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस आज के दिन को हम मना रहे हैं, यानी 9 अगस्त को। ये एक अनौपचारिक दिन है जो लोगों को अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने, स्क्रीन और तकनीक से दूर रहने तथा साहित्य की दुनिया में खो जाने के लिए प्रेरित करता है। और आज के दिन के महत्व की बात श्रोताओं करें तो पढ़ने की आदत हर किसी में होनी चाहिए। और ये दिन लोगों को डिजिटल उपकरणों को छोड़कर वास्तविक पन्नों वाली किताबें पढ़ने की भी सलाह देता है। ये लेखकों साथ ही साथ पाठकों और विभिन्न प्रकार की कहानियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर होता है और किताबें पढ़ने से तनाव भी कम होता है। और खैर, ज्ञान तो बढ़ता ही है। हम सभी जानते हैं कि बचपन से लेकर तामोमर हम किताबें पढ़ते रहते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया होता है उस ज्ञान को हम दूसरों तक भी बाँटते हैं। बिल्कुल सही बात कही ना दोस्तों, इसी तरह से होता है। किताबों से प्राप्त किया गया ज्ञान जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम सब की वापसी हो चुकी है। और हम आज बात कर रहे थे नेशनल बुक लवर डे के बारे में। तो श्रोता, जो किताबें होती हैं वो ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि ये हमारी सोच, साथ ही साथ सोच के साथ हमारी कल्पना और नज़रिए का दायरा भी बढ़ाती है। और किताबों के जरिए हम बिना कहीं गए अलग अलग दुनिया विचार और अनुभवों से जुड़ जाते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि किताबों से हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों को भी वही ज्ञान देते हैं। और आज का दिन यानी 9 अगस्त को हम बुक लवर डे मना रहे हैं। इस दिन की शुरुआत कब और किसने की, इसका कोई स्पष्ट आधिकारिक कारण नहीं है, लेकिन ये दिन किताबों को पढ़ने, उनसे मिलने वाले ज्ञान और बुक रीडिंग से मिलने वाली खुशी को सेलिब्रेट

करने के लिए भी मनाया जाता है। और किताबों का इतिहास काफ़ी पुराना है श्रोताओं, प्राचीन काल से ही किताबें पढ़ी जाती हैं और छपाई की तकनीक और विकास ने किताबों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जर्मन के गोहांस गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के विकास के कारण किताबें बड़े पैमाने पर छपना आसान हो गई थी। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, टाइपराइटर और कंप्यूटर जैसी तकनीकों ने किताबों के निर्माण और प्रसार का तरीका भी बदल दिया है। श्रोताओं, किताबें ही हैं जिससे हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है और किताबों के जरिए हम जागरूक हुए हैं। खासकर हम अपनी महिला बहनों की बात करें तो कोई समय हुआ करता था कि उन्हें पढ़ाई से बिल्कुल दूर रखा जाता था। यही कहा जाता था कि इन्होंने पढ़कर क्या करना है, चूल्हा चौका ही तो करना है। लेकिन समय का बदलाव हुआ और समय के बदलाव का सीधा सा असर हम सभी देख सकते हैं। आज हमारी महिला बहनें कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं और उच्च से उच्च जो है ओहदे पर पहुंच भी रही है। ये सारा शिक्षा का ही असर है। शिक्षा ने आज हमारी बहनों को बहुत सारा ज्ञान दिया है। जो कभी घर के कोने पर सिमटी सी खड़ी रहती थी, घर का कोई भी फैसला होता था उसे बोलने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, लेकिन समय का बदलाव ऐसा हुआ और शिक्षा का असर हम सब पर इतना हुआ कि आज घरेलू फैसलों में भी हम और हमारी महिला बहनें जो है अपना योगदान दे पाई हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी बातें और जानकारियां भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और अब आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, कहते हैं अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त और शांत मन, इन तीनों चीज़ों की वजह से सभी लोगों का जीवन सफल हो जाता है। और बिल्कुल सही बात कही, जो लोग किताबें पढ़ते हैं बहुत सारा ज्ञान वहाँ से एकत्रित करते हैं, और ये कहा जाता है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही है कहने वालों ने श्रोताओं। और किताबें पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हमारे जीवन में होते हैं। नियमित रूप से किताबें पढ़ने से अलग अलग विषयों बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ शब्दों और भाषा के इस्तेमाल से शब्दावली बेहतर होती है। किताबें पढ़ने से नए नए शब्द हम सीखते हैं, और रीडिंग हैबिट से सोचने की क्षमता बेहतर होती है, और किताबें पाठकों को अलग अलग परिस्थितियों में और विचारों से रूबरू करवाती है। श्रोताओं, किसी भी विषय को अलग नज़रिए से देखने और गहराई से सोचने की आदत भी विकसित होती है, और अलग अलग परिस्थितियों में स्थिरता भी हम सीख जाते हैं। किताबें पढ़ने का श्रोताओं एक फ़ायदा ये भी रहता है कि इससे स्ट्रेस कम होता है। व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय किताबें पढ़ने के लिए निकालना रिलैक्सेशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। खासकर फिक्शन या पसंदीदा विषय की किताब पढ़ना व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोज़मर्रा की चिंताओं से दूर ले जाकर कहानियों की दुनिया में ले जाता है। कभी मन ना करे श्रोताओं कुछ काम करने के लिए, तो हम कहानियों की किताबें तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि किताबें भी बहुत सारे काम की होती हैं, और उसमें कहानियां जो होती हैं वो अगर हमें पता होगी तो हम बच्चों को भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और कहानियों से भी हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो किताबों से जुड़े रहिए, किताबें कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं। हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और आपने भी पढ़ी हैं, तो आइए किताबों से जुड़ा हुआ गीत आप तक पहुँचाते हैं। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शो, तो इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो उज्जैन धर्मशाला और हम आज बात कर रहे हैं किताबों के बारे में। किताबें तो खैर आपने भी बहुत सारी पढ़ी हैं और गीत के जरिए भी यही कहा गया है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। जी हाँ, किताबें पढ़ी हैं तभी तो आज ज्ञान प्राप्त किया है। किताबें पढ़ते समय हमें बहुत सारे विचार भी मन में आते हैं और बहुत सारा ध्यान भी हमारा किताबों पर लगा रहता है। नियमित रूप से किसी एक समय पर किताब पढ़ने से दिमागी कसरत होती है और इसे फोकस बनाए रखने की क्षमता भी विकसित होती है। श्रोताओं, किताबें पढ़ते समय पाठक अपने दिमाग में पात्रों, जगहों और घटनाओं की कल्पना करते हैं, जिसे कल्पना को सक्रिय रखने और नए विचारों के लिए जगह बनाने में भी मदद मिलती है। किताबों से मिलता है अलग अलग दृष्टिकोण को समझने का मौका। जी हाँ, अलग अलग लेखक और विषयों की किताबें पढ़ने से दुनिया को देखने के नए नज़रिए सामने आते हैं, जिससे व्यक्ति अपने विचारों के अलावा दूसरों को भी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी बातें और जानकारियाँ। इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम श्रोताओं लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बात आज हम पुस्तकों की कर रहे हैं। पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और गुरु होते हैं और साथ ही साथ बिना स्वार्थ के हमें ज्ञान, प्रेरणा और सही रास्ता भी श्रोताओं दिखाते हैं। कठिन समय में पुस्तकें हमें धीरज और साहस देती हैं। इसके साथ साथ पुस्तकें अज्ञानता से अंधकार को दूर करती हैं। इससे हमें दुनिया भर का ज्ञान और इतिहास मिलता है और बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ पढ़ने से हमारी बुद्धि और सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। जी हाँ श्रोताओं, अच्छी किताबें हमें नैतिक मूल्य और संस्कार देती है। ये हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करती हैं और हमें बेहतर इंसान भी बनाती हैं। श्रोताओ, किताबें हम सभी को पढ़नी चाहिए और महापुरुषों की दैनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी पुस्तकों से ही मिलती है। महापुरुषों को भी यही कहना है कि जितना हो सके ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, ये जीवन भर हमारे साथ रहता है। और जैसे हमने पहले भी बात की कि किताबें पढ़ने से हमारा जो है तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। ये हमारी कल्पना शक्ति को पंख देती है। और साथ ही साथ जैसे हम आजकल के समय की बात करें तो हम सभी फ़ोन से, मोबाइल से, लैपटॉप से लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा किताबें पढ़ने से जो है हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन लैपटॉप चलाने का भी दुष्प्रभाव जो है हम सभी को देखने को मिलता है। किसी की आँखों में दर्द, किसी के सर में दर्द, इस तरह की परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ता है। और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो इस तरह की परेशानियों से कहीं ना कहीं बचे रहते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अलग से, और वो ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहता है। कहीं ना कहीं किसी समय हम कोई बात कर रहे हों तो वो ज्ञान हमारे दिमाग में चलता रहता है और वो बात, वो ज्ञान हम दूसरों से भी बांट पाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की जानकारियाँ और बातें। इनसे थोड़ा सा अलग हटते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज हम किताबों की बातें कर रहे हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, किताबें हमारे जीवन की दोस्त होती हैं और साथ ही साथ हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं। वे हमारे लिए आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच में निर्णय लेने में भी मदद करती हैं। ये हमें आदर्श नागरिक बनाती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, सर्वकालीन शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती है। किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन होता है और साथ ही साथ अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों के जीवन के संघर्ष की एक अनूठी दास्तां होती है। इसके दौरान संघर्ष की सच्ची साथी भी रहती हैं और हर छात्र को निश्चित रूप से किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताबें सिर्फ प्रतियोगी जीवन का ही साथी नहीं है बल्कि ये जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ हम आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ ढेर सारी जानकारियां साझा की है, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। अगली बार नई बातों, नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दो?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको। लेना सर। सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: ओके सर।
4: हेलो
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने

वर्ल्ड्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
4: बेटा तुम याद रखना,
3: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
4: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
5: ये लो भैया पानी।
4: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
6: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
7: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
8: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
7: जल है तो कल है।
9: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपके ऊपर।
4: ये ना सर।
5: सर सर सर,
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: ओके सर।
4: हेलो
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
8: तुझे पूरा यकीन है?
7: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
9: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
11: तुम इतने पैसों को क्या करोगे?

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के इस एपिसोड को लेकर के मैं बड़ी एक्साइटेड हूं, क्योंकि काफी मेहनत करके मैंने ये कुछ गाने जो हैं वो आपके लिए ढूंढे हैं।

म्यूजिक की दुनिया के दो जिस्म एक जान है, जब ये दोनों मिल जाए तो गाने तो हिट होने ही हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिनेमा के एवरग्रीन म्यूजिकल डुओ आडी बर्मन और किशोर दा की। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक क्लासिक हिट्स दिए। एक साथ इन दोनों ने 165 मूवीज की हैं। लेकिन इस सबकी शुरुआत कैसे हुई थी, बर्मन दा और किशोर दा की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ऐसे थे हमारे आरडी बर्मन और किशोरदा की दोस्ती, जैसे मानो इन दोनों को किसी लड़की की जरूरत नहीं थी। एक दूसरे से ही प्यार किया करते थे, एक दूसरे के ही साथ में दिन और रात बिता लिया करते थे। आपको पता है इनकी दोस्ती कैसे हुई थी? हुआ कुछ यूं कि एक दिन बर्मन साहब कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, एक फिल्म के किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो में गए थे। उसी स्टूडियो की दीवार के ऊपर बैठ करके, यानी कि एंट्रेंस पे जो गेट के पास की दीवार होती है, उसके ऊपर बैठ करके एक आदमी हर एक इंसान को इमिटेट कर रहा था। जो भी वहां से गुजर रहा था उनकी नकल उतारे जा रहा था। बर्मन साहब अंदर ही जा रहे थे और वो आदमी दीवार से कूद कर स्टूडियो में जा पहुंचे। जो जो गाना गा रहे थे बर्मन दा, उसका सत्यानाश करके वो खुद उस गाने को गाने लगे। जब बर्मन साहब ने पूछा कि कौन है ये आदमी, तब कहा किशोर दा ने कि मैं अनाथ हूं, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, प्लीज एक चांस दे दो, मुझसे भी एक गाना गवा लो। आरडी बर्मन साहब ये सुनने के बाद दिल खोल के हंसे कि वो दीवार वाला जो आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि अशोक कुमार जी का छोटा बेटा किशोर कुमार है। और बस वहीं से हमारे बर्मन साहब और किशोर दा की ये जो दोस्ती की शुरुआत हुई, पूरी जिंदगी चलती चली गई। बर्मन साहब ने ये हमेशा माना कि किशोर दा वॉज द बेस्ट सिंगर बॉलीवुड एवर हैड। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ बर्मन दा और किशोर दा की ही नहीं थी, इसमें एक तीसरा इंसान भी था। कौन था इनके ग्रुप का वो तीसरा इंसान, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। तकदीर लिखने वाले एक एहसान करते, मेरे दोस्त की तकदीर में एक और मुस्कान लिखते। ना मिले कभी दर्द उनको, तू चाहे तो उसकी कीमत में मेरी जान लिखते। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में जो कि एक दूसरे के नाम अपनी जान कर सकते थे, यानी कि आर डी बर्मन जी और किशोर कुमार। जैसा मैं कह रही थी कि इन दोनों की दोस्ती के तो चर्चे आज तक भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे, बल्कि इनकी शरारतों में, इनके गानों में एक और शख्स भी हमेशा हुआ करते थे हिस्सेदार, और वो कोई और नहीं बल्कि आशा भोसले जी थी। आशा भोसले जी जो कि किशोर दा की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। किशोर दा खुद कहा करते थे कि आशा भोसले जी से ज्यादा अच्छा दोस्त कभी उन्हें मिला नहीं, और आशा भोसले जी जो कि बर्मन साहब की पत्नी हुआ करती थी, तो इन तीनों का मानो एक ग्रुप सा बन गया था। हर जगह जाकर के, हर फिल्म मेकर से जाकर के ये तीनों साथ में मिला करते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब लता जी ने खुद आर डी बर्मन जी को कहा था कि तुम तीनों की कुछ ऐसी मिली भगत सी हो गई है कि तुम मुझे तो भूल ही गए हो। उस पर किशोर दा ने कहा था कि मुझे आपसे डर लगता है दीदी, इसलिए आपके साथ में मुझे काम करना पसंद नहीं है। लता जी को ये बात थोड़ी सी खटकी जरूर होगी, लेकिन ये जानते हुए कि किशोर दा तो जो मन में आता है वो कहते हैं, पर मजाक में कहते हैं, कुछ मीन नहीं करते हैं, यही मानते हुए शायद लता जी ने इस बात को जाने दिया होगा। तो चलिए, इतनी बात हो ही गई है इनकी दोस्ती की, तो सुनाते हैं आपको अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर सेलिब्रेटिंग किशोर दा

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आरडी बर्मन और किशोर कुमार को साथ में। बताइए, ये दोनों शख्स अलग अलग ही इतने ज्यादा बड़े म्यूजिशियंस एंड कंपोजर्स और सिंगर रहे हैं, तो इनको साथ में मिल करके यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं, तो आज का एपिसोड तो बड़ा कमाल है। यहाँ पर बर्मन साहब के बारे में, पंचमदा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से म्यूजिक बनाना इन्हें बहुत पसंद था। चाहे वो खाली ग्लास हो, खाली बोतल हो, चम्मच से निकाली हुई आवाज हो, दांत के किटकिटाने की आवाज हो, रेत के गिरने की आवाज हो, या फिर सिर्फ बांस की एक लकड़ी से निकाली हुई आवाज हो, किसी भी चीज से म्यूजिक बनाना तो कोई पंचमदा से सीखे। लेकिन क्या आपको पता है कि पंचमदा ने एक बार एक तोहफा दिया था किशोरदा को, और उस तोहफे के कारण इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया था, बैठ करके एक महफिल जम गई थी। ये तोहफा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये तोहफा एक एक्सपीरियंस था। क्या था ये तोहफा और कैसे इस तोहफे के कारण इन दोनों ने मिलकर के एक फिल्म का म्यूजिक दे दिया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं बात कर रही थी यहाँ पर एक तोहफे के बारे में जो कि पंचम दा ने किशोर दा को दिया था। क्या हुआ, एक बार यूं ही खुश होकर के पंचम दा ने एक बेली डांस शो अरेंज किया था एक्सक्लूसिवली किशोर दा के लिए, सिर्फ और सिर्फ किशोर दा देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। पेमेंट भी हो गए थे लेकिन किसी कारण से डांसर्स आए ही नहीं, और इसका भी फायदा हुआ क्योंकि बर्मन साहब और किशोर दा साथ में बैठे हो, करने को कुछ ना हो और अच्छा म्यूजिक ना बने, ऐसा हो सकता था क्या? बेली डांसर्स आए नहीं, शो हुआ नहीं और हमारे पंचम दा और किशोर दा ने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया और यूं ही बैठे बिठाए फिल्म रोमांस का म्यूजिक इन दोनों ने बना लिया था। बताइए, यूं ही ऐसे ही एक शाम को बैठे हुए अगर गाने बन जाए तो इनसे ज्यादा बेहतर और कोई सी जोड़ी हो सकती थी क्या? बर्मन साहब यानी कि हमारे पंचम दा और किशोर दा की इसी दोस्ती के नाम अगला गाना सुनाएंगे आपको, और यही कहूंगी मैं इन दोनों के नाम के कुछ रिश्ते वक्त की तरह होते हैं, बीत तो जाते हैं लेकिन याद बनकर रह जाते हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कैसा लगा आपको ये एपिसोड? चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।

0: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत बर्फ की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर सर सर।
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

थे दोस्तों 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं हां तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रुति और रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो तो सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां थोड़ी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तो सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल ते होर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हाँ तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम जो तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तो हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
4: बेटा तुम याद रखना,
3: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
4: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
5: ले लो भैया पानी।
4: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
6: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
7: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
8: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
7: जल है तो कल है।
9: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या आर्टिजन मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर,
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: ये
4: भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
9: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
10: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
11: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
12: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
13: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
14: सही है यार।
13: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
14: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
13: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

कानी दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक दशो तो तुहां सारे दई माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी कने तुहां सारे जो इंतजार रहिंदा है कि कालू दी या दो बजती न कने कालू दी या तुहां सारे इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न। दशो तो जेड़ा इंतजार तुहां जो लग्या था कि कालू दी या दो बजते न कने कालू दी या तुहां सारे इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न, तो जरूर जेड़ा इंतजार है से तुहांदा खत्म होंदा है। तो तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कने जुड़ी सकदे कने अहां कने गलबात जेड़ा है से जरूर करी सकदे। पहले श्रोता अहां कने जुड़ चुके हो न, कर देन तिना कने गलबात से कुथू ते बोला देन तिना दा ना क्या वे। हेलो हेलो हेलो श्रोताओं कॉल जेड़ा है से जरूर डिसकनेक्टेड हुई हो तो हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाते न, क्योंकि सफर जेड़ा है से बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए कने तो हाँ कोशिश जेड़ा है से जरूर करा, क्योंकि कोशिश कर देन ताई अहाँ कुथी न कुथी अपना जेड़ा काम है से अच्छे ने करी पाते न। तो इसी कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ सकते कने अहाँ कने गलबात जेड़ा है से जरूर करी सकते। तो जरूर अपनी गलबात जो अहाँ इतों ही रोक देन कने तो हाँ जो ले करी चल देन शुरुआत की तरफ कार्यक्रम का जेड़ा आगाज ऐसे कर देन इस प्यारे दे गीत कने प्यारी दे शुरुआत कने। तो हाँ सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

तुहां सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष शशि कन्ने। इसी कन्ने तुहां सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत। शुरुआत जरूर अहां करी थी है कन्ने जेड़ा श्रोता न सभी अहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो हेलो हेलो हेलो दर्शो तो जेड़ा कोई नेटवर्क इशू जेड़े से हो सकता है या कॉल जेड़े से आवाज़ जेड़ा श्रोता कॉल करा देने से ज़रूर अहाँ तक नहीं पहुँचा दी है तो अहाँ कोशिश करा देना अपनी तरफ से कि जेड़ा श्रोता कॉल करा देने तिना दी कॉल अहाँ तक पूछे कने ज़रूर कोशिश जेड़ा से अहाँ दी जारी रहनी है। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ कने जुड़ सकते कने अहाँ कने गल बात जेड़े से ज़रूर करी सकते। तो शो तो अजकने दिने दी गल करिए तो अजकना जेड़ा दिन है सियाहां वास्ते बेहतर खास है क्योंकि हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा कने अजकना जेड़ा 9 अगस्त दी अहाँ गल करिए 2026 दी तो दिने दी शुरुआत अहाँ कर देन एक सकारात्मक सोच कने क्योंकि सकारात्मक सोच जेड़ा है से अहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करती है। शुरुआत हमेशा पॉजिटिव विचार करने होना चाहिए क्योंकि अहाँ दे जेड़ा विचार हैं अहाँ दे जेड़ा कोई भी अहाँ काम करते हैं अगर अहाँ पॉजिटिव विचार करने करते हैं तो कुथी ना कुथी अहाँ जो तिना विचार च या कोई भी अहाँ काम करा दे तिना चाहें जो सफलता जेड़ा से ज़रूर मिलती है। तो सफलता पाने वास्ते अहाँ हमेशा मेहनत करते हैं कने जिंदगी है जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव जेड़ा इसे चलिया रहिंदा जिंदगी च तो तुहां मौसम दा जेड़ा लुप्त है सभी लै दे होने न कने बरसात दे मौसम च अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखा दे होने न तो जरूर अहाँ भी तुहांदा जेड़ा ख्याल है से रखना है कने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने तुहां जो अगली जेड़ा फरमाइश है क्योंकि कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है कने ये सफ़र तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक तो ज़रूर इस सफ़र जो अहाँ थोड़ा दिया और अग्गे बढ़ाना है क्योंकि जेड़ा श्रोता न सभी इंतज़ार पर होंगे कि कालू दिया तिना दिया जेड़ा फरमाइशा न से अहाँ तिना तक पहुँचान तो ज़रूर अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा दे न तुहां सारी भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो ज़रूर इंजॉय करा।

0: कानवी देश मिलप 2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपने रेडियो दो शशि कन्ने दर्शो तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गलबात छिड़े से जरूर करी सकते तहंदी जिड़ा गलबात कन्ने जिड़ा श्रोता ने से जरूर जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते सरसी जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तोहन दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी हां ता ठीक ठाक है। तोहन बोला
0: जी? यहां भी ठीक ठाक है जी। तोहन कुथु ते बोला दे कने तोहन दा ना के है जी?
1: मैं तंगलोट जा ते बोला था, रमेश मेरा ना है
0: जी। रमेश जी क्या हाल चाल है तंगलोटी वाले दे, क्या काम कार लगाया तोहन?
1: कुछ मिला है जी, ठीक ठाक है सारे
0: जी। अच्छा, ठीक ठाक ही चाहिए ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो मौसम कदे है तंगलोटिया का?
1: तंगलोटिया पहले बरखा हुई है तो ना हुन से आधी जो
0: जी। अच्छा, हुन रुकी है ना जी?
1: हाँ जी, हुन तो पता लगती है मारी मारी
0: जी। और नोई ताजी?
1: नोई ताजी तो फिलहाल कुछ नहीं है
0: जी। अच्छा, कोई
1: गलादे तोरा तारा दे ले तू बाकी तक नहीं है
0: जी। ता तो हुंदी साइड भी पे हल्ला चोरा दा
1: अल्ली तो करता सुतरी जा
0: जी। अच्छा अच्छा
1: जी।
0: ता रमेश जी आज तो जी
1: आज कुने ता जाग दे ता ना पाव दा ना दो दो टाइम ता दो क्या बता हुंदा बुरे वक्त दा
0: जी जी। ड्यूटी जेड़ा ऐसे देना पोदी ना जी?
1: हाँ जी
0: हाँ जी जी। दिन भी ड्यूटी कने राती भी ड्यूटी देना पौधी
1: क्या करना फिर इस बार जब आगे ले तो आती खुद आई है क्या करना
0: जी जी जी। तो रमेश जी आज तो हाँ कुंदिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करके
1: गाना सुनाई दे जी। कांगड़े का टिल्ला माता गढ़वासी का केरिया
0: जी। अच्छा, कांगड़े का टिल्ला सुनना है तो हाँ ना जी? जी जरूर जी। तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा जी। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ
0: ਜੀ। ਤੁਹਾ ਕੁਥੋਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
2: ਚਾਤੜੂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
0: ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਥਾ ਫੋਨ?
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋ ਨਾ ਜੀ?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ। ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਬੋਲਾ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਚਾਤੜੂ ਤੇ।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता मंगल जी आज तो हाँ क्या काम कार छेड़िया, क्या करा दे?
2: बरखा लग गई, काम कार नहीं पार ला मंदर रहेगी ऊपर बरखा लगी पे।
0: जी जी,
2: सफाई सफाई कितनी जरा थोड़ी
0: जी। अच्छा जी, चलो
2: काले में चल के राम करता कर रोटी खा दे राम करा दे वहाँ
0: जी। अच्छी गाल है ना जी, थोड़ा दिया श्रद्धा भाव होना भी जरूरी है ना जी।
2: हाँ जी
0: जी। तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी?
2: आज मान जो सुनाने भोले दा गाना
0: जी। अच्छा, श्री भोले दा गाना सुनने तो हाँ आज?
2: सारा रा रा रा रा भोले डंबरू बजाया
0: जी। सारा रा रा
2: सारा रा रा रा रा भोले डंबरू
0: जी। जरूर है गीत तो हाँ तक पहुँचान दे ना जी।
2: हाँ जी
0: जी। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਕਨਿਆ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛਿੜੇ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਭੀ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਸੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਆਹ गलबात करा देना, तो हाँ भी अपने जेड़ा विचार हैं से जरूर सांझा करी सकते। तो जरूर इसी विचार करने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह तक पहुँचाते न ये फरमाइश।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए तंगलोटिया ते कने तिना दा नाव है रमेश जी। तो ज़रूर रमेश जी तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया कने गलबात अहाँ जिड़े से करा देन सकारात्मक सोच उपर कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते कने अहाँ कने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोताओं गलबात सकारात्मक सोच कने नकारात्मक सोच यानी कि दो पहलू हैं हर चीज़ दे दो पहलू जिड़ा न उसे जरूर होंगे न। मोबाइल फोन की गल करिए मोबाइल फोन के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं दो पहलू हैं। तो तिने गल करिए सकारात्मक सोच दे कने नकारात्मक सोच दे सकारात्मक सोच दे क्या फायदे न कने नकारात्मक सोच दे क्या फायदे न। नकारात्मक सोच दे तो नुकसान ही हैं कने सकारात्मक सोच की गल करिए तिदे फायदे हैं। अगर अहाँ अपने जेड़ा विचार हैं पढ़ाई करा देन अच्छे विचार अपने अंदर रखा देन तो कुथी ना कुथी अहाँ अपनी जेड़ा डेली लाइफ है उस जो अगे बढ़ाई पा देन कने अगर अहाँ नकारात्मक सोचा देन तो कुथी ना कुथी ये जेड़ा नकारात्मक विचार हैं सियाहां दे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव जिड़े से कुथी ना कुथी पौंदा है कने अहां दी जिड़ा सेहत है सभी जरूर थोड़ा दे अहां जो दस्तक देना जिड़े से शुरू करेंदी है। कई बार होंदा ना कि एक ही गल है अहां हो जो हमेशा ज़्यादा सोच विचार करना शुरू हो जाते हैं या खुद ते ही अहां कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू हो जाते हैं या नैगेटिव विचार की ओर चलना जड़े से शुरू हो जाते हैं कने अगर अहाँ पॉजिटिव सोचते हैं तो अहाँ कुथी ना कुथी तनाव मुक्त रहते हैं कने अपनी सेहत का जिड़ा ख्याल है से जरूर रखी पाते हैं। तो इसी कने अहाँ भी तुहदा जिड़ा ख्याल है से जरूर रखना है कने अपने कार्यक्रम के सफर जो अगे बढ़ाना है कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलना है क्योंकि इंतजार तो वास्ते हमेशा लंबा रहता है पर उन वास्ते जड़ा है इंतजार थोड़ा दिया बिल्कुल थोड़ा दिया है।

तशुताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत, प्यारी दे फरमाइश तो जरूर ये फरमाइश तुह तक पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। फिर ते हाँ वापिस जड़े से अपनी गलबात उपर आई हो ना कने ये फरमाइश हाँ जो आई हो वे चैतड़ुए ते कने तिना दा ना वे मंगल जी तो जरूर मंगल जी तक हाँ ये गीत फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। कने आज हाँ जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न से करा दे न सकारात्मक सोच दी कने हर दिन कुछ ना कुछ आहा वास्ते दिन जिड़े से खास होंदे न कने 9 अगस्त दा दिन भी कुछ खास है। कने मौसम दी गल करिए ता कुथी ना कुथी मौसम भी जिड़े से अपना जिड़ा बदलाव है से जरूर लेंदा है कने तो हाँ भी मौसम दे अनुसार अपना जिड़ा ख्याल है से रखा दे उन्हें न बरसात दे मौसम च आहयो हर तरफ ते अपना जिड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने दी ज़रूरत होंगी चाहे से अहां दा खान पान है चाहे से अहां दा कोई भी काम में खान पान अगर अहां दा सही है ताई अहां अपनी सेहत जो भी कुथी ना कुथी सही जिड़े से रखी पान दे न तो इसी कन्ने हाँ फिर ते अगे बढ़ते न कन्ने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे न क्योंकि तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने अहाँ कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोताओ गल बात करने वास्ते जिड़ा अहाँ दा नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे न क्योंकि नंबर तुह तक पुजूंगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टैक्सट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर तो हाँ कॉल करा या टैक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। चल देना सुन देना अगली फरमाइश तो हाँ सारे भी जड़ा सा प्यारी दिया फरमाइश है जो सुना कने कार्यक्रम का जड़ा माहौल है से थोड़ा दिया चेंज कर देना।

दर्शकों तो सा रहे हैं सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश तो जरूर तुह सारे जो ये फरमाइश जड़े से पसंद आई होनी है कने तुह जरूर डांस करने का मन करा दा था या हर कुसी दी अपनी अपनी जड़ा पसंद है जरूर होंदी है। इसी कने आ फ्री ते वापिस अपनी जड़ा गल बात है तिहा जो लेकरी तुह तक पुजी हो न कने तुह सारी भी मेरी गलबात भी जरूर सुना दे होने न कने इस कार्यक्रम दे सफर च भी जरूर जड़ा इसे कोशिश करा दे न कि कालू दिया इस सफर कने जुड़ते न कोशिश जड़ा इसे तुहंदी जरूर पूरी होनी है कने अगले जड़ा श्रोता न सियाह कने जुड़ चुके हो न कर दे तिना कने गलबात। हेलो हेलो हेलो।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते
1: जी स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
0: जी। हाँ जी ठीक ठाक।
1: जी? तो हाँ, थोड़ी अपनी आवाज़ जिड़े से ज़्यादा कर लेंगे जी।
0: हाँ फोन नहीं गया था, फोन नहीं आवाज़ कर।
1: जी बड़ी कम आवाज़ हो दी जी तो हंदी
0: अच्छा
1: जी। थोड़ी देर थोड़ा
0: मैं
1: देर जोर ने बोला ना
0: तो
1: जी।
0: बोला के बोला भी मैं माया। हाँ
1: जी। हेलो,
0: जी कौन सी आवाज है? हाँ
1: जी अल्ली भी आवाज़ सिरे से क्लियर नहीं हो रही तो हंदी
0: हेलो हेलो
1: जी। जी बिल्कुल ही कम है। हेलो,
0: हाँ जी हेलो।
1: हाँ जी,
0: कौन सी?
1: हेलो,
0: हेलो
1: शुतों कॉल चिड़े से ज़रूर डिस्कनेक्टेड हुई हो ता अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफ़र जो आगे बढ़ाने दे ना, क्योंकि जिंदगी च चिड़ा उतार चढ़ाव से चले रहने, पर श्रोता दे मैं ही रिक्वेस्ट कर दी है कि थोड़ा दिया जोन ने बोला, क्योंकि आवाज़ चिड़े से तोहंदी जड़ा इसे क्लियर नहीं होती। थोड़ा देर जोन ने बोला कने जरूर इस कार्यक्रम दे सफ़र च जुड़ा, क्योंकि ये सफ़र तोहंदा है, कने तोहां सारे भी इस सफ़र करने जुड़ सकते, कने अपनी जड़ा गल बात है से जरूर अहाँ कने सांझा जड़े से करी सकते। तशो तो 9 अगस्त जो आज अहाँ जड़ा खास दिवस बोली सकते बना देने, कने तोहां रेडियो सुना दे उन्हें ना, तो तुहां प्यागा ते ही सुना दे उन्हें ना कि आज यहाँ क्या खास दिवस चिड़े से बना देना। राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस अहाँ बना देना, कने कुन कुन जेड़ा पुस्तकां दा प्रेमी है या किताबें पढ़ना अच्छी लगती है। वैसे तो हर किसी जो किताबें पढ़ना अच्छी लगती हैं, पर सही है ना कि अगर हाँ पूरी लगन मेहनत ने कोई भी काम कर देना, तो तीस जहाँ जो सफलता जड़े से ज़रूर मिलती है। इसी सफलता तो आगे बढ़ाने देना, कन्ने अहाँ अगले जरा श्रोता ना से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना, कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: नमस्ते।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो, श्रोताओं कॉल जड़े से डिस्कनेक्टेड हुई हो, तो ज़रूर अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है, कने तुहां जो जेड़ा गल बात है तिहदी ओर लेकरी चल देना, तो ज़रूर स्क्रीन टाइम जेड़ा है से अहाँ दूर किना करी सकते, क्योंकि हर कुसी दा अपना अपना शौक होंदा। अगर अहाँ किताबा पढ़ देना तो अहाँ थोड़ा दिया मोबाइल फोन ते दूरी जेड़ा है से बनाई सकते, कने चाहे से फोन है चाहे से कंप्यूटर है तिना ते दूरी बनानी है, तो अहाँ किताब जेड़ा किताब बना तिना जो पढ़ने दी आदत जेड़ा है से ज़रूर बनाई सकते, कने इसी कन्ने जेड़ा ज्ञान है आनंद है नई नई जेड़ा कहानियां न विचार हैं तिना कन्ने अहाँ जुड़ी सकते, या कहानियां कई बार अहाँ अपने जेड़ा दादा दादी हैं या बुजुर्ग हैं या अहाँ दे माता पिता हैं सभी जरूर अहाँ जो कहानियां जेड़े न से सुनाते न, कने अहाँ भी कुथी ना कुथी तिना कहानियां जो सुनते न, फिर तिना कहानियां ते कोई ना कोई जेड़ा प्रेरणा से अहाँ जो जरूर मिलती है, तो जरूर इसी प्रेरणा कन्ने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाने है, कने तुहां जो लेकर चलना है अगली फरमाइश की ओर। इंतजार थोड़ा देर तुहां जो भी लग गया, कने जेड़ा बाकी श्रोता है ना सभी यहाँ जो कॉल भी करा देना, जरूर कॉल भी करा, पर समय भी यहाँ थोड़ा दे है, तो समय के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है, तो जरूर अहाँ समय के अनुसार चल देना, कने अगला जेड़ा गीत या अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देना।

आंबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन आपनी रेडियो दोष शशि कने तोहा सारे ही सुनिया ए प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश समय जेड़े से अपनी रफ्तार लेकर चलिया है कने समय दे अनुसार आहां जो भी चलना पौना तशो तो आहां जेड़े से थोड़ा दिया स्क्रीन टाइम किन्ना दूर करी सकते अजकने दूर की गल करिए ज़्यादातर अहां दा जेड़ा समय है से हमेशा मोबाइल फोन ही रहिंदा है। अगर बच्चे पढ़ाई करा देन ठीक है कि मोबाइल फोन दे जेड़ा फायदे भी हैं नुकसान भी हैं पर इतना भी ज़्यादा अहां जो मोबाइल फोन च बिजी नहीं रहना है कि अहां अपनी जेड़ा बचपन है या अपना जेड़ा इंजॉय है से कुथी ना कुथी अहां भूलदे चले हो। इसी कन्ने गलबात अहां करा देन राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस दे बारे च तो तुहां सारे दा भी शौक है किताबें पढ़ना या कहानियां पढ़ना या कहानियां पढ़ी करी सुनना या अपने माता पिता ते कहानियां सुनना या तिना कहानियां दा जेड़ा क्या सार है या क्या मतलब है क्योंकि कई कहानियां जेड़ा न सहन जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानियां छोटे छोटे जेड़ा कहानियां दे जेड़ा बोल हैं या गीत हैं गीतों की अहां गल करिए गीत भी अहां जो बड़ा कुछ सिखाते हैं पर से अहां पर निर्भर करता है कि अहां क्या सीखते हैं या क्या अहां सिर्फ सुनना ही पसंद करते हैं कि तिना गीता जो समझते भी हैं या तिदा मतलब क्या है या कहानियों का मतलब क्या है या अहां दे जेड़ा माता पिता या अहां दे जेड़ा दादा दादी हैं से अहां किस प्रकार जेड़े से हर चीज़ का ज्ञान जड़े से दिन देना तो ज्ञान होना भी ज़रूरी है। कन्या अपने दोस्तों जो भी जड़े से उपहार किताब जड़े से दे सकते हैं क्योंकि हर दिन अह सोचते हैं कि कोई ना कोई जड़ा गिफ्ट है से अह अपने दोस्तों जो देन या तिना का बर्थडे है तो अह जरूर तिना जो गिफ्ट देन तो किताब तुह गिफ्ट करा या एक पौधा तुहां तिना जो गिफ्ट करते हैं तो बड़ी अच्छी गल है। इसी कन्ने अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कन्ने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते हैं कन्ने मुझे लगा था हुण कार्यक्रम का जिहड़ा समय है से हुण अहां जो बोला था कि तुहां अनुमति जिहड़ा है से जरूर ले लिया तो जरूर अहां अनुमति भी ले लैंदे हैं कन्ने इस गीत जो भी तुहां तक पहुँचाते हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दो?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है, आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर, वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या आर्टिजन मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर।
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: ओके सर।
4: हेलो
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। और बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
12: पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उस रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर, वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना सर। सर सर सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। और बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

नमस्कार श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम लेकर आऊं सचिन कपूर हाजिर भुचगो हिंदी अपनी गप्पा। तैयार श्रोताओं, शुरुआत कर लेंदन कार्यक्रम रे इस प्यारे दे गीता होगी।

इतुंद अपना वेडियो गुंजन धर्मशाला और आउतुंद अपना सचिन कपूरा कार्यक्रम तुंद अपना पसंदीदा कार्यक्रम तुंद वेडियो सेट मा इस वक्त चल रहा।

मजे चुकरता उना कार्यक्रम होने शतों बेहतरीन बेहतरीन मजेदार गीत के न सोत तो है इस वक्त वीडियो गुंजन में होने कर देन सचिन कपूर सोगे।

सामुदायिक रेडियो गुंजन तो है इस वक्त हुणु करदन और रेडियो गुंजन में गद्याली कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रहा शो तो हुंदन अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर थे ए रेडियो गुंजना और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही निश्वतों। आइया कार्यक्रम जो हगू बढ़ंदन और हुंदन ए प्यारे दिया गीत।

सामुदायिक रेडियो गुंजन तो है इस वक्त हुणु गर्दन और रेडियो गुंजन में गद्याली कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रहा शो तो हुंदन अगला गीत।

श्रोतो उम्मीद करनो कार्यक्रम तुसु पसंद आ बुना ते समय की असो बुचगो तुसु सभी थो अलविदा लेने रा लेनो आ तुसु सभी थो अबे अलविदा श्रोतो हुंदे रे तुंदा अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पनारे।

विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अपने आधिकारिक आवास ओकओवर में नदौन विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुसंधान कर रहे पीएचडी शोधार्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आधुनिक शिक्षा और कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी शिक्षण संस्थान राज्य की शैक्षणिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार इन संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा आधुनिक आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। सरकारी स्कूलों में सीबीएसई प्रणाली शुरू करना, डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने जैसे निर्णय हिमाचल को अत्याधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की गरीब जनता के हितैषी हैं। उनके हर निर्णय की बुनियाद में लोकहित तथा गरीब कल्याण निहित है। उनका कहना है कि इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की पहचान और सूचियों में सुधार को लेकर की गई पहल अत्यंत स्वागत योग्य और सराहनीय है। इस पहल की सराहना इसलिए हो रही है क्योंकि इसने दशकों पुराने लचर सिस्टम को बदलकर सीधे वास्तविक गरीबों को हक दिलाने का काम किया है। उनका कहना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कागजों में सिमटी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को धरातल पर उतारने और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका ने दबाव बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी सीनेट ने लीडेन से ऑफ अग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को 86-11 के भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के तहत रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान से होने वाले अमेरिकी आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि ये टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है और बिल को कानून बनने के लिए आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त होकर नियमित हुए टीजीटी के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार की मंजूरी और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पात्र टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र शिक्षकों का अनुबंध अवधि का वेतन 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक संशोधित वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा उपनिदेशकों को आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की निर्देश दिए हैं। हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा निदेशालय के निर्देशों में विद्यार्थियों की संख्या 20 या इससे अधिक है वहां तत्काल 2 JVT शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सरकार के इस फैसले से अब ऐसे स्कूलों में सिंगल टीचर व्यवस्था खत्म होने की उम्मीद है। सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे प्राथमिक स्कूलों की संख्या और वहां उपलब्ध शिक्षकों की स्थिति का आकलन शुरू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले किसी भी प्राथमिक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे न रहे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षण क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां श्रेणी ए शिक्षण पदों के तहत की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केंद्र शिमला, क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला और विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान में ये नियुक्तियां की जाएंगी। जिस चेंजी ने सरकार के सामने नए सवाल खड़े किए हैं, 15 अगस्त को वही पीढ़ी प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए जाने वाले संदेश के केंद्र में होगी।
पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जैन जी के सवालों, आकांक्षाओं और भविष्य को खास जगह देंगे। सरकार इसके लिए होमवर्क कर रही है। पीएमओ ने मंत्रालयों में ब्यौरा मांगा है कि युवाओं के लिए अब तक क्या हुआ, उसका असर क्या रहा है और आगे की योजना क्या है। मकसद ये कि लाल किले से कहीं हर बात के पीछे आंकड़े हों। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले पात्र लोगों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान आधार कार्ड आधारित व्यवस्था के तहत किया जाएगा। शुरुआत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन और राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन से होगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभागीय पोर्टल पर अपडेशन का काम चल रहा है। इसके चलते इन पेंशन की जून, जुलाई और अगस्त की किस्तें अभी तक जारी नहीं हो पाई हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार पोर्टल पर अपडेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगामी 2-3 दिन में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद लंबित किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। पहली बार पेंशनरों के भुगतान को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मछुआरों की नावों, उपकरणों की खरीद को लेकर सरकार ने व्यापक अनुदान योजनाएं शुरू कर दी हैं। सरकार की फिशिंग वोट सब्सिडी योजना के तहत पात्र जलाशय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए नाव खरीदने के लिए 70% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नाव की लागत 50,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से 70% धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 30% राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गोविंद सागर, पोंग डैम, चमेरा, रंजीत सागर और कोल डैम सहित प्रमुख जलाशयों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बेड़े का आधुनिकीकरण करना है, जिससे मछुआरों की सुरक्षा, कार्यकुशलता और आय के अवसरों में सुधार हो सके। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को किसी पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य होना आवश्यक रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 50 दिन मछली पकड़ने का कार्य किया हो। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और शाम के 6 बज गए हैं। श्रोताओं, ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। आज का ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आज का संडे आपका बहुत अच्छा निकला होगा। श्रोताओं, अभी संडे निकला नहीं है, लेकिन हम दिन की बात कर रही हैं। आज दिन में आपने जो भी सोचा होगा, जैसा भी आपका दिन रहा होगा, अच्छा रहा होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और शाम को हसीन और अच्छा बनाने के लिए हम रोज़ाना हाजिर हो जाते हैं इस समय, यानी कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को लेकर, जिसका समय रहता है शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। और ये 2 घंटों का सफ़र हमारा आपके साथ बीतता है, बात करके, जानकारियां आप तक पहुंचा के और आपका मनोरंजन करवा के। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत रोज़ाना की तरह हम करेंगे विचार के साथ। तो लीजिए आज का विचार। जीवन में यदि खुश रहना है तो दिल बड़ा और उम्मीद हमेशा छोटी रखें। ये था आज का विचार श्रोताओं। और एक बार फिर से हम विचार को दोहराना चाहेंगे, ज़िंदगी में यदि खुश रहना है तो दिल बड़ा और उम्मीद हमेशा छोटी रखनी चाहिए। तो श्रोताओं, इस विचार के साथ कार्यक्रम में हम आ पहुँचे हैं और आप सभी का करते हैं स्वागत। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में क्या बातें होंगी वो आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन पहले कार्यक्रम में लेंगे हम आज के कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं श्रोताओं प्यासा सावन फिल्म से। और आवाज़ें दी हैं इस गीत को लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और शाम का ये समय है और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ, मेघारे मेघारे मत परदेस जारे। तो श्रोताओं, मेघा जो है वो आजकल आपको दिख रहे हैं और इन बादलों का आजकल समय चला हुआ है, तो हम यही चाहेंगे कि ये बादल यूं ही हल्के फुल्के बरसते रहें और अभी ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बारिश जो है हमारे लिए, ख़ास करके किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हर मौसम का अपना ही एक मज़ा होता है, अपना एक महत्व होता है। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम आपके साथ बात करेंगे आज के दिन को लेकर। आज 9 अगस्त का दिन है और संडे जो है वो आज है, और आज आप सभी ने ज़रूर छुट्टी को एंजॉय किया होगा, आपके जो काम पेंडिंग होंगे उन्हें किया होगा, और बच्चों ने भी ज़रूर आज का दिन इंजॉय किया होगा। खैर, बच्चे तो आजकल इंजॉय कर ही रहे हैं क्योंकि स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने श्रोता हैं वो भी कहीं ना कहीं से हमारी आवाज़ सुनते होंगे, कार्यक्रम सुनते होंगे, तो उनसे भी हम यही कहेंगे कि अपनी छुट्टियों को इंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ, बारिश में कहीं दूर ना जाएं, नदी नालों के पास तो बिल्कुल भी ना जाएं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आज हम बात करेंगे नागासाकी डे की, और नागासाकी दिवस जो है आज के दिन मनाया जाता है, और इस बारे में कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोता जो हैं वो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए हम शाम के समय ज़रूर इन बातों को, इन जानकारियों को आपके साथ दोबारा से दोहराते हैं। आज 9 अगस्त है, नागासाकी दिवस जो है हम मना रहे हैं। श्रोताओं, ये दिन हमें इतिहास के उस बेहद दुखद अध्याय की याद दिलाता है जब 1945 में जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। तो श्रोताओं, कहीं ना कहीं परमाणु बम का नाम सुनते ही हम डर से जाते हैं, भय हमारे मन में बना रहता है, क्योंकि कहते हैं परमाणु बम एक ऐसा बम होता है जिसका इस्तेमाल करें तो पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है, हो भी जाती है। श्रोताओं, उस घटना ने सिर्फ एक शहर को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इंसान ने अपनी बनाई विनाशकारी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया तो उसका असर कितना भयावह हो सकता है। लेकिन श्रोताओं, नागासाकी को याद करने का उद्देश्य केवल अतीत के दुख को याद करना नहीं है, इसका सबसे बड़ा संदेश है ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। श्रोताओं, सोचिए, अगर आज दुनिया में कोई बड़ी परमाणु तबाही हो जाए तो उसका असर केवल एक देश या एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, इंसानों का जीवन, पर्यावरण, भोजन, पानी और आने वाली पीढ़ियाँ सब प्रभावित हो सकती हैं। तो श्रोताओं, आगे भी इस बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही आज हम आपके साथ बात करेंगे नेशनल बुक लवर्स डे। किताबों के शौकीन जो श्रोता हैं हमारे, ज़रूर आज कार्यक्रम के साथ जुड़े और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं। लीजिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में गीत के बाद अब हम चलेंगे जानकारियों की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, जानकारियां भी हमारी होती हैं जो आप तक पहुंचानी होती हैं। तो श्रोताओं, जानकारियों के इस पिटारे को हम खोलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं इस जानकारी को। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को चड़ी में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा फेज़ 1 से फेज़ 8 के सर्वे के तहत चिन्हित रैत ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान चड़ी, घरोह, लांजनी, मेट्टी, कजलोट, कल्याड़ा और सुधेड़, नागनपट, भिटलू, अनसुई, रावा और करेरी पंचायतों के चिन्हित लाभार्थियों से बातचीत भी की गई। केवल सिंह पठानिया ने कहा श्रोताओं कि संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्वे के तहत चिन्हित लाभार्थियों से सीधे बातचीत करके ये सुनिश्चित करना है कि पात्र लोगों के चयन में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। साथ ही श्रोताओं, उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान प्राप्त सुझावों और अच्छी बातों अथवा पात्र व्यक्ति से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मामले को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से हम रुख करेंगे गीत संगीत की ओर। तो लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हिम्मत वाला फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

श्रोता 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और साथ ही श्रोताओं आपको बता दें 88.4 MHz पर हमीरपुर के डेटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और इस समय सुन भी रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे जो हमीरपुर के श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी और आप सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी नमस्कार। तो श्रोताओं कार्यक्रम में गीत संगीत आज ज़रूर आपके साथ हम भी सुनेंगे, क्योंकि गीत संगीत श्रोताओं एक ऐसा दोस्त बोल सकते हैं या एक ऐसी दवा हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल को सुकून और मन को शांति देकर जाते हैं। श्रोताओं आपने कभी गौर किया होगा, खास करके हमारी जो श्रोता महिलाएं हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे।

कि जब आप घर पर अकेले होते हैं, सभी अपने काम पर चले जाते हैं, खैर महिलाओं को भी बहुत सारे घर के काम करने पड़ते हैं, और ऐसे में जब रेडियो ऑन हो और प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिल जाए ना, तो वो अकेलापन हमें खलता नहीं है और गीतों को हम गा सकते हैं। कई बार हम लोग शर्माते हैं कि कोई सुन रहा होगा क्या सोचेगा, लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना, तो हमें जैसे तैसे गा लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। अपने काम करने के साथ साथ गीतों को गुनगुनाती भी हूँ, गाती भी हूँ और झूमती भी हूँ, और मेरा ये मानना है ऐसा करना चाहिए। अपनी खुशी हमारे अपने हाथों में होती है श्रोताओं। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपके साथ नागासाकी डे पर बात हो रही है, और कुछ ही देर बाद हम बात करेंगे नेशनल बुक लवर्स डे पर भी। तो श्रोताओं, यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, क्योंकि अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गीतों के साथ, जानकारियों के साथ। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नागासाकी डे पर। और जैसा कि हमने कहा, परमाणु बम जिसकी अगर हम सोचें भी तो भी हम डर जाते हैं, डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो श्रोताओं, एक सवाल जो है वो उठता है कि ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहली बात तो ये है कि देशों के बीच में संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और नियमों का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, नई पीढ़ी को युद्ध की महिमा नहीं बल्कि शांति, सह अस्तित्व और मानवता का महत्व समझाना होगा। और आजकल के समय में श्रोताओं, ये तो खैर बड़ी बात है, लेकिन छोटे छोटे झगड़ों में भी अगर हम घर वाले बड़े जो सदस्य हैं वो अगर कहीं लड़ पड़ते हैं, तो आज की युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं दिल में एक बात रख लेती है, बदले की भावना रख लेती है। और वो बदले की भावना इतनी भयानक हो सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रंजिश जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है वो नज़र आती है, और उसका रूप जो होता है वो सच में डराने वाला होता है। तो ऐसे में हमें नई पीढ़ी को बिल्कुल मानवता की जो महत्व है वो समझाने चाहिए, और हमें भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने में ही सबकी भलाई है। श्रोताओं, हम आम नागरिक भी शांति की संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। नफरत की बजाय संवाद को चुनकर, अफवाहों के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करके, और मतभेदों को हिंसा की बजाय बातचीत से सुलझाने की सोच अपनाकर। तो श्रोताओं, बातों को यहीं पर रोकते हैं और फिर से कार्यक्रम में सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, आशिकी फिल्म का ये गीत श्रोताओं, कुमार शानू की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

आशिकी फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और ये 2 घंटे का सफ़र हमारा ऐसा रहता है जिसमें हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं, जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं और प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी करवाते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे हैं नागासाकी डे पर। तो आज के इस दिन पर एक छोटा सा संकल्प हमें लेना चाहिए। हम ऐसी दुनिया बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, जहाँ युद्ध से ज़्यादा महत्व शांति का हो, हथियारों से ज़्यादा महत्व इंसानियत का हो, और आने वाली पीढ़ियों को डर नहीं, एक सुरक्षित भविष्य विरासत में मिले। श्रोताओं, आजकल के समय में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम लोग आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं। आए दिन हम देखते हैं जगह ज़मीन के लिए लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, और कई बार हम हिंदू मुसलमान ये धर्मों पर भी लड़ाई लड़ने लग पड़ते हैं। तो श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बड़ा बनाने की ज़रूरत है, और इन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हम झगड़ते रहे तो देश में शांति नहीं बनी रह सकती। तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं शांति केवल एक शब्द नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। तो नागासाकी की स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इतिहास से सीखें और ऐसी त्रासदी को फिर कभी दोहराने ना दें। श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारा गीत जो है अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं श्रोताओं, और ये गीत पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है और आप लोग सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं ये गीत नहीं, हमारे लिए एक पाठ भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकती है। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जिसे हम लेकर आए हैं धूल का फूल फिल्म से, और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत गीत हमने आप तक पहुंचाया और ज़रूर आपको भी पसंद आया होगा। इस गीत में बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही गहराई से इस गीत को शायद लिखा गया है श्रोताओं, और बहुत गहराई से अगर इस गीत को हमने सुना होगा तो इसमें ज़रूर कहा गया है कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। बहुत बड़ी बात है श्रोताओं, और सोचने वाली बात है कि सच में हम जब धरती पर पैदा हुए तो हमारा कोई धर्म नहीं था, हमारी कोई जाति नहीं थी, लेकिन ये हम सभी ने बनाया और कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक धरती, लेकिन इस धरती को कितने ही टुकड़ों में हमने बांट दिया है। तो श्रोताओं, आपस में प्यार भाव और देश प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इतने बड़े बड़े हादसों से बच सकते हैं। जैसा कि नागासाकी डे पर हम बात कर रहे हैं, उस समय भी श्रोताओं धरती जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और इंसानियत दोबारा से कैसे ज़िंदा हुई वो तो वही जानते हैं जिन्होंने उस मंज़र को देखा होगा। और हम तो किताबों में ही पढ़ पाते हैं और किताबों में पढ़ कर ही हमारी रूह कांप जाती है। तो श्रोताओं, ऐसे हादसे और ऐसी घटनाएं दोबारा फिर से ना हो उसके लिए हमें भी आगे तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं अब बातों को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं जानकारी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रगति की ओर बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना से दृढ़ीकरण के लिए 83.85 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस क्रम में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्पेक्टर मशीन और सेल स्प्रिटर मशीन की खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। अब IGMC शिमला में शीघ्र ही मरीजों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान में जांच और विशेषज्ञ उपचार सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। स्पेक्ट एक उन्नत नैदानिक सुविधा है श्रोताओं, जो अंगों और ऊतकों की कार्य प्रणाली का आकलन करने के लिए 3D तस्वीरें तैयार करती है। इसे चिकित्सकों को विभिन्न रोगों की अधिक सटीक पहचान और मूल्यांकन में मदद मिलती है। ये हृदय, मस्तिष्क, हड्डियों, फेफड़ों और गुर्दों से संबंधित रोगों के निदान और मूल्यांकन में

सहायक होती हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी बहुत ही अच्छी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और इस जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम का अगला एक और प्यारा सा गीत। तो लीजिए इस गीत को सुनिए जिसे हमने लिया है जीत फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इस समय श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में 7 बजे आपको सुनवाए जाएंगे समाचार। तो समाचारों से पहले आपको लिए चलते हैं एक और गीत की ओर। लीजिए, आशा भोसले की आवाज़ में सुनिए खुशबू फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो कार्यक्रम में अब समय है समाचारों का।
1: राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: इक्यानवे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं इस समय आपकी अपनी रेडी दोस्त सुषमा के साथ। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में, और एक बार फिर से सुषमा की ओर से सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे श्रोताओं, और कहीं ना कहीं हमें भी खुशबू आ रही है आपके किचन से, यानी कि डिनर बनने की तैयारी जो है वो चली हुई है, और हमारी जो महिलाएं श्रोता हैं वो भी कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, और खाने में जो तड़का लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं गानों का तड़का जो है वो भी लग रहा होगा। तो श्रोताओं ऐसे ही गीतों के साथ जुड़े रहने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो चलते हैं कार्यक्रम का आगाज़ एक बार फिर से करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। लीजिए सुनिए इस गीत को जिसे हमने लिया है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। आवाज़ें हैं साधना सरगम और उदित नारायण की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से लौटेंगे बातों की और जानकारियों की और। तो जैसा कि श्रोताओं आप सभी जानते हैं कि आज कार्यक्रम में नागा सागी डे पर हमने बात की, और साथ ही एक और दिवस आज हम मना रहे हैं, नेशनल बुक लवर्स डे की। और श्रोताओं, बुक्स की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं हमें अपना स्कूल या कॉलेज या याद आ जाता है। और जैसे कि अभी आपने गीत भी सुना, जो जीता वही सिकंदर फिल्म का, और इस फिल्म में श्रोताओं कहीं ना कहीं कॉलेज की लाइफ बताई गई है और पढ़ाई बताई गई है। लेकिन उस दौरान में हमें अगर किताबें पढ़नी पड़ती थी तो हमें बहुत गुस्सा आता था। हम उतना ही पढ़ना चाहते थे जितने कि हमारे पास पास होने के लिए नंबर मिल जाएँ। लेकिन कहते हैं ना कि कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किताबों के प्रेमी होते हैं, उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे घरों में ऐसे लोग मिल जाएंगे और बहुत सारी ऐसी किताबें भी मिल जाएंगी जो कि किताबें पढ़ते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो श्रोताओं कहते हैं कि किताबें हमारी ऐसी दोस्त होती हैं जो बिना किसी शिकायत के हमारा साथ निभाती हैं। जब भी हम अकेले होते हैं तो किताबें हमें एक नई दुनिया की ओर लेकर जाते हैं। श्रोताओं, किताबें कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाती हैं, वो पन्ने पलटते पलटते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो उस किताब में हमने पढ़ा होता है, जो शब्द हमारे दिल को छू जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, दिल में घूमते ही रहते हैं। और किताबों के प्रेमी इस बात को समझते होंगे। श्रोताओं, मैं अगर अपनी घर की बात करूँ तो मेरी मदर इन लॉ जो थी वो किताबों को पढ़ना बहुत पसंद करती थी। खैर, उस समय की बात है जब पढ़ाई बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ करती थी, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर भी वो शब्दों को जोड़कर बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ लिया करती थी, और आज भी उनकी याद में वो किताबें घर पर पढ़ी हुई हैं। तो श्रोताओं, उन किताबों को जब हम खोल के पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हमारे दिल को छू जाती है। तो ऐसी ही आध्यात्मिक किताबें वो पढ़ती थी और काफ़ी बातें वो हमें भी समझाया करती थी। तो कहीं ना कहीं किताबें हमें कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाती हैं। तो किताबों पर बातें ज़रूर होंगी, लेकिन श्रोताओं, किताबें जो जिन्हें हम पढ़ते हैं उन्हें लिखने वाले भी तो होते हैं। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आपको बहुत से लेखकों की कुछ किताबों की कुछ पंक्तियों पर हम ज़रूर नज़र दौड़ाएंगे और ज़रूर आपको सुनाएंगे उन पंक्तियों को। वो पंक्तियाँ क्या कहती हैं, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, किताबों को पढ़ तो नहीं सकते पर लिख ज़रूर सकते हैं। तो सुनते हैं इस प्यारे से गीत को कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। लीजिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप तक पहुँचा रहे हैं, और अर्पण फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये भावुक कर देने वाला गीत। श्रोताओं, लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े, बहुत बड़ी बात है और सच भी है। कहीं ना कहीं ये गीत सुनकर आंसू जो है वो भी आ जाते हैं, और जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और वो अगर ये गीत सुन लें तो भाई सच में कहते हैं ना कि अपना पुराना घर अपना मायका याद आ जाता है। खैर श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नेशनल बुक लवर्स डे पर, यानी कि किताबों के शौकीन। और श्रोताओं, अब जो बात हम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना स्कूल का समय भी याद आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी और हिंदी के विषय में आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की। उनकी लिखी गोदान जो एक किताब थी उसमें एक लाइन थी, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। ये पंक्ति श्रोताओं हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई कई बार अपने भीतर ही होती है। बिल्कुल। और साथ ही श्रोताओं, हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो उनकी लिखी मधुशाला, इसमें मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, ये भी एक लाइन जो है उनकी उस बुक में, उस पाठ में, मधुशाला बुक में लिखी गई थी। यहाँ भाव ये है कि अलग अलग पहचान के बावजूद इंसानियत और साझा अनुभव हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। साथ ही श्रोताओं, महादेवी वर्मा जिनकी किताबें आपने पढ़ी होंगी, जिनके बारे में आपने अपने स्कूल समय में पढ़ा होगा, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी लिखी एक किताब थी, और उनकी पंक्तियाँ कुछ थी जिनका भाव था, स्त्री को केवल किसी रिश्ते की पहचान से नहीं बल्कि अपने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में भी देखा जाना चाहिए। साथ ही श्रोताओं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई गीतांजलि जो एक किताब है उसमें लिखा गया है, जहाँ मन भय से रहित हो और मस्तक ऊंचा हो। ये पंक्ति एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहाँ इंसान स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। तो श्रोताओं, किताबें सिर्फ कहानियाँ नहीं देती, वे हमें सोचने की नई खिड़कियाँ भी देती हैं। प्रेमचंद से जीवन की सच्चाई, बच्चन से मानवीय एकता, महादेवी से आत्मसम्मान और टैगोर से स्वतंत्र विचार की प्रेरणा हमें मिलती है। यही तो है किताबों की असली ताकत। एक पन्ना ख़त्म होता है लेकिन उसकी सोच हमारे भीतर चली ही रहती है। तो श्रोताओं, हम भी अपनी बातों को यहीं पर देते हैं विराम और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में अगले प्यारे से गीत की ओर। 3 Idiots फिल्म का ये गीत श्रोताओं अब आप सुनने जा रहे हैं शान और शांतनु मोहिता की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नेशनल बुक लवर्स डे पर। कहते हैं श्रोताओं, किताबें हमारी ऐसी दोस्त होती हैं जो बिना किसी शिकायत के हमारा साथ निभाती हैं। जब हम अकेले होते हैं तो किताबें हमें एक नई दुनिया से मिलाती हैं। जब हम उलझन में होते हैं तो किसी ना किसी पन्ने से कोई ना कोई विचार हमें रास्ता दिखा देता है। किताब पढ़ना सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं बल्कि नए अनुभवों को जीना भी है। एक अच्छी किताब हमें किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे समय और कभी कभी किसी दूसरे इंसान की सोच तक भी ले जाती है। तो श्रोताओं, आज बुक लवर्स डे पर अगर आपके घर में कोई किताब कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रही है तो क्यों ना आज आप उन्हें ज़रूर देखें, खंगालें, उसके कुछ पन्ने खोलें। श्रोताओं, हर किताब हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है, कभी ज्ञान, कभी हौसला और कभी मुस्कुराने की वजह और कभी खुद को समझने का मौका। तो किताबों में ज़रूर हमें समय बिताना चाहिए। किताबों से दोस्ती करने वालों के लिए आज का दिन कुछ खास है, और उन्हीं के लिए आज का दिन जो है वो रहता है नेशनल बुक लवर्स डे के रूप में। तो श्रोताओं, आज के इस समय में अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी मोबाइल और उसकी स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमती जा रही है। ऐसे में किताब के कुछ पन्नों के साथ बिताया गया समय मन को ठहरने का मौका भी देता है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि जब आप लोग, यानी कि आज की जनरेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, 80s 90s के लोगों की बात कर रही हूँ, जब हम किताबें पढ़ते थे तो अगर हमें कहीं कोई फूल मिल जाता था, अच्छा गुलाब का फूल कोई दे देता था, तो हम उसे अपनी किताब में रख लेते थे और वो फूल सूख जाता था और उसे देख के हम उस दिन को, उस पल को याद किया करते थे। साथ ही श्रोताओं, बात करते करते एक और बात याद आ रही है कि उस समय एक पौधा होता है जिसे हम विद्या का पौधा कहते थे, और उसकी पंखुड़ी को तोड़कर अपनी किताब में रख लेना शुभ माना जाता था। तो हम कहते थे इस विद्या को किताब में रख लेते हैं, हमें सारी की सारी बुक जो है वो याद हो जाएगी। खैर, वो बचपना था और बचपने की बातें थी, लेकिन फिर भी किताबों से बहुत प्यार रहता था। जब भी किताबों की, जिसे हम अपने समय में जिल्द कहते थे, आजकल तो कवर कहते हैं, तो जब वो उसके ऊपर जो लगी जिल्द फट जाती थी तो हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज़पेपर या कोई ना कोई ऐसा पेपर हमें मिल जाता था तो हम उसे दोबारा से रैप करने बैठ जाते थे ताकि हमारी किताब अच्छी और सुंदर दिखे। और श्रोताओं, किताबों को संभाल कर रखना उस समय में सच में बहुत अच्छा माना जाता था। घर के अगर 3 या 4 बच्चे हुआ करते थे तो जो भी बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता था तो उसकी पुरानी किताबें, जो उसे छोटा भाई या बहन होता था, उसे इस्तेमाल के लिए दिया जाता था। और श्रोताओं, ऐसे में जो घर का बड़ा बच्चा होता था वो बड़ा लक्की रहता था, कहीं ना कहीं उसे नई किताबें मिलती थी। लेकिन जो छोटा बच्चा हुआ करता था तो वो अपने बड़े भाई बहन से यही कहता था कि मुझे तो पुरानी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, तो प्लीज़ इसे संभाल कर रखना, इसे ज़्यादा गंदा मत करना। तो ये छोटी मोटी नोक झोंक उस समय किताबों के लिए हुआ करती थी। खैर, आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो हर बच्चे को नई बुक्स और नई नोटबुक्स मिला करती है। तो समय समय की बात है, समय बदलता जा रहा है, लेकिन किताबें वही हैं। किताबों को पढ़ने वाले लोग आज भी बहुत सारे हैं और किताबों से प्रेम करने वाले भी आज भी बहुत सारे लोग हैं। किताबों को पढ़िए श्रोताओं, थोड़ा सा समय निकालिए, और आपको जैसी भी किताबें पढ़ना पसंद है, आध्यात्मिक या फिर कहानियों की पुस्तकें, ज़रूर पढ़िए और अपना समय किताबों को दीजिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब हम बातों को यहीं पर रोकेंगे और आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। श्रोताओं, जुर्म फिल्म का ये गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और माफ़ी चाहूँगी आपसे कि गीत के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी गलत दे दी। अभी जो आपने गीत सुना अभिनेत्री फिल्म से लिया गया था और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। श्रोताओं इस गीत के बाद कार्यक्रम में अब एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, और उस ब्रेक के बाद आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायक कहानी, तो ज़रूर सुनने के लिए तैयार बैठिए कहानी, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

बिल्कुल श्रोताओं, गूंज अपनेपन की और इस गूंज के साथ आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि इस ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपको सुनवाते हैं कहानी, तो श्रोताओं आज की कहानी भी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं हमें ज़रूर प्रेरणा देकर जाने वाली है। समय रहते सजग हो जाओ, श्रोताओं इस कहानी का ये टाइटल है। गुरु और शिष्य एक कच्चे रास्ते से जा रहे थे श्रोताओं, और रास्ते में एक छोटा सा पौधा जो है वो दिखाई दिया। गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि इस पौधे को उखाड़कर फेंक दो। शिष्य ने जल्दी ही उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। थोड़ी और दूर चलने पर वहाँ उस पौधे से थोड़ा सा बड़ा पौधा गुरुजी को नज़र आया, और गुरुजी ने फिर से अपने शिष्य को कहा कि इसे भी उखाड़कर फेंक दो। तो शिष्य वही सही होता है जो अपने गुरु की बात मानता है, और उस शिष्य ने फिर वही कहा, वही किया जो कि उसके गुरु ने कहा। उसने ताकत लगाई और उसे उखाड़ दिया। कुछ और दूर चलने पर श्रोताओं एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिला, और गुरुजी तब बोले अपने शिष्य को इसे भी उखाड़ दो। तो इस पर शिष्य हैरान होकर बोला, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतना बड़ा पेड़ मैं कैसे उखाड़ पाऊँगा। तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बुरी आदतें, बुरे काम और बुरे लोग शुरुआत में छोटे पौधे जैसे होते हैं, समय रहते उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अगर एक बार उनकी जड़ें गहरी हो गई तो उन्हें उखाड़ना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल श्रोताओं, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत से बुरे पल, बुरी यादें, बुरी आदतें ऐसी हम में आ जाती हैं जिनसे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करने पर समय रहते अगर उन आदतों को छोड़ दिया जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी श्रोताओं। तो कहानी के बाद अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे जुर्म फिल्म का गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में।

0: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार प्रदेश को आधुनिक शिक्षा और कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राज्यपाल ने विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का अभिन्न अंग बनाने का किया आग्रह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार के मनमाने फैसलों से हर वर्ग बुरी तरह परेशान। और प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित है, क्योंकि वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार प्रदेश को आधुनिक शिक्षा और कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री आज शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास में प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधार्थियों और नादौन के विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थान राज्य की शैक्षणिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इनकी गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों के भविष्य, शिक्षा और नादौन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांगड़ा जिला की महत्वाकांक्षी फिन्ना सिंह बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना जल्द पूरी की जाएगी। धर्मशाला में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 60 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और परियोजना को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी। अग्निहोत्री ने बताया कि फिन्ना सिंह परियोजना पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से अब तक करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। कांगड़ा में बन रहे हवाई अड्डे को लेकर उन्होंने कहा कि इसके बनने से क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 83.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसी कड़ी में IGMC शिमला में 6 अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनों को खरीद और CTL कंडाघाट के उन्नयन के लिए 14 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA संबंधी मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षण संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, उद्योगों और स्वयंसेवी संगठनों से पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का अभिन्न हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। सोलन जिला के समलेच में आज पौधारोपण अभियान के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और पारिस्थितिकी क्षति को न्यूनतम करने के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि पौधारोपण से ही जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है।
1: हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रकृति की एक सुंदरता देखने को मिलती है। ये जरूरी है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, कि ये जरूरी है पर्यावरण को किस प्रकार से हम बचाएं। उसी उपलक्ष्य में विभिन्न संस्थाएं जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को कर रही, वो अपने आप में स्वागत योग्य है। हमें भी चाहिए, प्रधानमंत्री जी का अभियान था एक पेड़ माँ के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये कंस्ट्रक्शन और दूसरी जो गतिविधियां हैं उसके कारण से काफी हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन पर्यावरण को बचा करके रख

0: की सुंदरता को बचा करके रखें, ऐसा एक प्रयास। और मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, इस अभियान को एक मिशन बना करके काम करें।
1: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला में जुब्बल उपमंडल की भोलाड़ पंचायत में 8,60,00,000 रुपए से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कों का निर्माण एक जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है। रोहित ठाकुर ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सड़क निर्माण से ही गांव-गांव तक विकास कार्य पूरे किए जा सकते हैं। उन्होंने क्षेत्र में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण और 3,00,000 रुपए से निर्मित एक जिम का उद्घाटन भी किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के अव्यवहारिक और मनमाने फैसलों से हर वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बागवानी क्षेत्र वर्तमान सरकार की प्रशासनिक विफलता और लापरवाही के कारण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस बागवानों को सेब का दाम खुद तय करने की गारंटी देकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब सेब बेचने पर नोटिस भेजकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र की चर्चा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मरीजों को आयुष्मान भारत व हिमकेयर जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के चहुंमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमीरपुर जिला की ताल पंचायत के अमनेड़ गांव का दौरा करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई बड़ी विकासात्मक परियोजनाएं मंजूर की हैं। इनमें मेडिकल कॉलेज, कैंसर केयर संस्थान, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज सहित कई अन्य संस्थान शामिल है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेजों के लिए रोबोटिक सर्जरी व पैट स्कैन जैसी अत्याधुनिक मशीनों का प्रावधान किया है और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधाएं आरंभ की जा रही हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों की डिस्पेंसरी की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने सहित अमनेड़ गांव के मैदान में लाइटों और मोक्ष धाम के रास्ते के लिए धनराशि का प्रावधान करने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने कल 10 और 11 अगस्त के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई।
2: मेजर जो एक्टिविटी 10 तारीख से प्रदेश में बढ़ेगी, उनमें से अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो 10 तारीख को जो है हमारा कांगड़ा जिले के अलावा सिरमौर और साथ ही कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट है 10 अगस्त के लिए। और वहीं पे 11 अगस्त की अगर हम बात करें तो कुल्लू, मंडी, सिरमौर के अलावा चंबा जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, हालांकि बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। 12 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में थोड़ी सी कमी आएगी, हालांकि भारी बारिश एक दो जिलों में हमें फिर भी देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट तक की जहां तक की बात है वो मुख्य रूप से हमारा चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू और मंडी जो जिले हैं वहाँ पे हमें काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज जो है 10 और 11 तारीख को देखने को मिलेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए आईएमडी ने जो है एडवाइजरी भी जारी की हुई है।
1: सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि संत रविदास जी की शिक्षाएं जाति पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती है। वे हमीरपुर जिला में नादौन क्षेत्र के ढगो में संत रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन यात्रा के समापन पर बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, सामाजिक समरसता और मानवता का संदेश दिया है। भाजपा ने सुजानपुर में विधायक सुधीर शर्मा और वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी महासचिव संजीव कटवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार FIR की सरकार बन चुकी है और जनहित के सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस को आगे किया जा रहा है। मंडी जिला प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रणी बनकर उभर रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिला में व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। जिले में 48,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और 8,400 हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक खेती के तहत लाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार प्रदेश को आधुनिक शिक्षा और कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राज्यपाल ने विभिन्न संस्थाओं व संगठनों से पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का अभिन्न अंग बनाने का किया आग्रह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार के मनमाने फैसलों से हर वर्ग बुरी तरह परेशान। और प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, समाचारों के साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय भी आप जानते हैं कि समाप्ति की ओर होता है, और ये समय होता है आपसे अनुमति लेने का। लेकिन श्रोताओं, जाने से पहले हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। श्रोताओं, आज का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। आज की जो जानकारी है वो आपने ज़रूर ली होगी और प्यारे प्यारे गीतों को भी इंजॉय किया होगा, ऐसी कामना हम करते हैं। और श्रोताओं, कहते हैं कि एक बार जाने के बाद दोबारा आने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल, और हम भी किसी और कार्यक्रम में फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों को लेकर, जानकारियों को लेकर। तो आज के लिए आपसे लूँगी मैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाऊँगी कुदरत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी गीत को सुनिए और मुझे दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्वधर्म संभव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्वधर्म संभव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर, वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर,
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम
4: है, ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
7: तुझे पूरा यकीन है?
8: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
9: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। 1 लाख रुपए वो मैं रख लेता।

आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। भारत पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पास। पात्र टीजीटी को जनवरी 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान। अब 20 छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 जेवीटी होंगे तैनात। असिस्टेंट प्रोफेसर के भरे जाएंगे 30 पद। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भी जेएनजी से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिमाचल में आधार कार्ड से जुड़ेगी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अपने आधिकारिक आवास ओकओवर में नदौन विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुसंधान कर रहे पीएचडी शोधार्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आधुनिक शिक्षा और कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी शिक्षण संस्थान राज्य की शैक्षणिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार इन संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा आधुनिक आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। सरकारी स्कूलों में सीबीएसई प्रणाली शुरू करना, डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने जैसे निर्णय हिमाचल को अत्याधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की गरीब जनता के हितैषी हैं। उनके हर निर्णय के बुनियाद में लोकहित तथा गरीब कल्याण निहित है। उनके कहना है कि इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की पहचान और सूचियों में सुधार को लेकर की गई पहल अत्यंत स्वागत योग्य और सराहनीय है। इस पहल की सराहना इसलिए हो रही है क्योंकि इसने दशकों पुराने लजर सिस्टम को बदलकर सीधे वास्तविक गरीबों को हक दिलाने का काम किया है। उनका कहना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कागजों में सिमटी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को धरातल पर उतारने और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका ने दबाव बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी सीनेट ने लीडिंग से ऑफ अग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को 86-11 की भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के तहत रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान से होने वाली अमेरिकी आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि ये टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है और बिल को कानून बनने के लिए आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त होकर नियमित हुए टीजीटी के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार की मंजूरी और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पात्र टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र शिक्षकों का अनुबंध अवधि का वेतन 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक संशोधित वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा उपनिदेशकों को आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की निर्देश दिए हैं। हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि जिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 20 या इससे अधिक है वहां तत्काल 2 जेवीटी शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सरकार के इस फैसले से अब ऐसे स्कूलों में सिंगल टीचर व्यवस्था खत्म होने की उम्मीद है। सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे प्राथमिक स्कूलों की संख्या और वहां उपलब्ध शिक्षकों की स्थिति का आकलन शुरू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले किसी भी प्राथमिक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे न रहे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षण क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां श्रेणी ए शिक्षण पदों के तहत की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी
11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केंद्र शिमला, क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला और विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान में ये नियुक्तियां की जाएंगी। जिस चेंजी ने सरकार के सामने नए सवाल खड़े किए हैं, 15 अगस्त को वही पीढ़ी प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए जाने वाले संदेश के केंद्र में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में चेंजी के सवालों, आकांक्षाओं और भविष्य को खास जगह देंगे। सरकार इसके लिए होमवर्क कर रही है। पीएमओ ने मंत्रालयों में ब्यौरा मांगा है कि युवाओं के लिए अब तक क्या हुआ, उसका असर क्या रहा है और आगे की योजना क्या है। मकसद ये कि लाल किले से कहीं हर बात के पीछे आंकड़े हों। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले पात्र लोगों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान आधार कार्ड आधारित व्यवस्था के तहत किया जाएगा। शुरुआत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन और राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन से होगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभागीय पोर्टल पर अपडेशन का काम चल रहा है। इसके चलते इन पेंशन के जून, जुलाई और अगस्त की किस्तें अभी तक जारी नहीं हो पाई हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार पोर्टल पर अपडेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगामी 2-3 दिन में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद लंबित किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। पहली बार पेंशनरों के भुगतान को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मछुआरों की नावों उपकरणों की खरीद को लेकर सरकार ने व्यापक अनुदान योजनाएं शुरू कर दी हैं। सरकार की फिशिंग बोट सब्सिडी योजना के तहत पात्र जलाशय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए नाव खरीदने के लिए 70% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नाव की लागत 50,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से 70% धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 30% राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गोविंद सागर, पोंग डैम, चमेरा, रंजीत सागर और कोल डैम सहित प्रमुख जलाशयों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बेड़े का आधुनिकीकरण करना है, जिससे मछुआरों की सुरक्षा, कार्यकुशलता और आय के अवसरों में सुधार हो सके। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को किसी पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य होना आवश्यक रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 50 दिन मछली पकड़ने का कार्य किया हो। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
4: बेटा तुम याद रखना,
3: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
4: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
5: ये लो भैया पानी।
4: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
6: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
7: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
8: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
7: जल है तो कल है।
9: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना
5: बहुत मस्त लगेगा आपको। लेना सर। सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
8: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
9: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
11: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: देखो रे
5: है ना सर।
4: देना
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम।
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
7: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
9: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए दिलाता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

की आवाज बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।